0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: कूपन पाउनु का साथ ही अर्जेंट बर्थडे केक 15 मिनटमै तयार पारिन्छ।
1: संपर्क को लागि सागर श्रेष्ठ मोबाइल नंबर 9851189987 सरिष्मा श्रेष्ठ मोबाइल नंबर 9860589988 पलांचोक बेकारी साध्यो बाटे चौकी पछाड़ी भीमेश्वर कोल स्टोर सँगै
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: यो रेडियो सैलुंग को समय सूचक हो। यति बेला साँझको छ बजेको छ।

नमस्कार रेडियो सैलु सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बजे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 छ शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुन 19 तारिक आषाढ 5 गते शुक्रबार पञ्चमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होश पवन जाए नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समा

नारायणम अब यो बताई नहीं भाई कुछ रे हरिवंश हरिवंश प्रभु को याद आए गरीकन कति कुरा को विस्तार कर सुन समुन का आदि भनिकन समुन का आदि नाम का 88,000 ईश्वर का प्रतिगुरु सुत जी ने बताने हो सैनीय कथा लियाएर यता राजा जन्मेजयलाई वैशम पाणी नाम का गुरु ने बताने हो सैनीय कथा लियाएर हमारा आदरणीय श्रोता महान महावर में लेकिन यह कथ प्रस्तुत कर लाई राजन अब ते मौक में यदि के भाला भेदि जस्त तो राधा पूर्व जन्म में को थे भो सन्दर्भ उ राजा जन्मे जैसे जो प्रश्न कर वैष्णव पाने नाम जो गुरु कि हो मिम्मी सान इतिहास लियाईकन तो बताऊँ त्यादी बताते हुआ महाराज लाइन जब तस्त थो ती भईस उपरांत अब तेरी मंच में चढ़ अवस्था में अलग रामचंद्र परमात्मा प्रभु भगवान जो पान को इच्छा लगे त्यां पान मुख में राख राखे त्यांखे जब तस्त कर खाँदाखेरि मात्र त्यो पानी खाएको पहिलो रस त्यो निल्नु हुँदैन त्यो केही दोषी हुन्छ।

कुरे दसैता वायु शरी हुन गए हनुमान दसैता अकस्मर गरी कुदेर हनुमान उल्टे दिया कासमा सीता जी कन भेटी फर्कन फेरा रामचंद्र का पासमा पुग्नी अकल बल